मैनू मिन हादी खुशी की जिल जिल बीबी बिन दुन हलुआ रिम जिन जिन जिन जिन्ना पसी की हलुआ ली।